की सिफारिश है। सब लोगों ने मारो राम राम पहुंचे, हम अठे राजी खुशी हैं, तुम उठे राजी खुशी राजो।